अलिहारी कुदरत वसहिया तेरांत न जाई लखे आ रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो

गावन तुदना चित गुपत लिख जाणन, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सुवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवत्या दर नाले। गावन तुदनो

चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल

मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अस्त सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद

निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबे तुम कावहु आप हाथ दे मुहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा वो रक्षा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूरन हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा।

कीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

घट घट के पट पट की जाने, जब उद करक करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो

दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताके ताप तनक मह हरिहु, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें सुबारा, काल फास्ते ताहे उबारा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मैं सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवान सगल चमगिरी तुमरा सुतर तारी तुम ते हो सो आगे का

0: कर गुरु कलगी तार जगदीश बोले सुनहार सत्रियाकाल।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

0: रमैया के गुण चेत परानी
1: कवन मूरते कवन दृष्टानी
0: किंतु स्वाद शिवार सिंगारिया
1: गर्भ अपन मैं जिन्हें उबारे
0: आर व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
1: पर जो बन भोजन सुख सूद
0: बिरद पिया ऊपर साख सैन
1: मुखिया पिया बैठ कौ दैन
0: निर्गुण गुण कछु न बुझे
1: ले हो तौ नानक सीजे
0: प्रसाद तर ऊपर सुख बसे
1: सुत भरात मीत बनता संग हस
0: जे प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक अमूला
0: जे प्रसाद भोगे सब रसना
1: सगल समग्री संग साथ बसा
0: तीने हस्त पाव कर नेत्र रसना
1: जिसे त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे
1: नानक काढ ले हो प्रभ आपे
0: आद अंत जो रखन हार
1: प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नव निध पावे
1: आस्यों

0: अष्टपति जिह प्रसाद शक्ति अमृत काहे
1: तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: हे प्रसाद सकंद तन लावे
1: तिस को सिमरत परम गत पावे
0: हे प्रसाद बस सुख मंदर
1: किसे त्याहे सदा मन अंदर
0: हे प्रसाद ग्रह संग सुख वसना
1: आठ पहर सिमरहु तिस रसना
0: हे प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याहे त्यावण जो
0: हे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: किसे त्याग कत अवर लुभावे
0: हे प्रसाद सुख से सुविजे
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
0: प्रसाद सक माने
1: मुख ताको जस रसन बखान
0: हे प्रसाद तिरहता धर्म
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: सब जी जब दर गय मान पावे
1: नानक पत से ती कर जावे
0: हे प्रसाद रो कंचन देही
1: लिव लावो तिस राम स्नेही
0: हे प्रसाद तेरा उल्ला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कह
0: हे प्रसाद तेरे सकल सिर ढाके
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके
0: हे प्रसाद तुझको ना बुझे
1: मन सास सास सिमरह प्रभ ऊचे
0: हे प्रसाद पाई दुर्लभ दे
1: नानक ताकी भगत करे
0: हे प्रसाद भूखन पैरी जे
1: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय
0: हे प्रसाद अस्व हस्त सवारी
1: मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी
0: हे प्रसाद बाग मलतना
1: राख परोए प्रभ अपने मना
0: जिन मन जिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठत साध तिस त्याई
0: तिसे त्याय जो एक लखे
1: इहा उहा नानक तेरी रखा
0: हे प्रसाद करे पुन बदान
1: मन आठ पहर कर तिसका त्यान
0: हे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: तिस प्रभ कौ सास सास चितारी
0: हे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप
0: हे प्रसाद तेरी नीकी जात
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: हे प्रसाद तेरी पत रहे
1: प्रसाद नानक जस कह
0: हे प्रसाद सुने करनाद
1: जे प्रसाद पेखा बिस्माद
0: हे प्रसाद बोले अमृत रसना
1: हे प्रसाद सुख सहजे बसना
0: हे प्रसाद हस्त कर चले
1: हे प्रसाद संपूर्ण फल
0: हे प्रसाद परमगत पावे
1: हे प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अवरत लागो
1: गुरु प्रसाद नानक मन जाग
0: हे प्रसाद तू प्रकट संसार
1: किस प्रभ को मूल न मनो विसार
0: हे प्रसाद तेरा प्रताप
1: हे मन मूर्त ता को जाप
0: हे प्रसाद रिकार्ज पूरे
1: सह जान मन सदा हजूरे
0: हे प्रसाद तू पावे साच
1: हे मन मेरे तू ता सिंह राज
0: हे प्रसाद सब की गत होए
1: नानक जाप जपाए जप सोए
0: आप जपाए जपे सो नाओ
1: आप गावाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभु कृपा ते होए प्रगास
1: प्रभु दया ते कमल बेगास
0: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
0: करुण दान पर तेरी मया
1: आप कछु न किन्हू लाए

0: अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप
1: जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोख
1: जैसे सूर सर्व कौ सुख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान
1: जैसे राज रंग कौला गय।

0: से तर ऊपर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान।
1: ब्रह्म ज्ञानी युग से ऊंचा,
0: मन अपने है सबते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए,
0: नानक जिन प्रभ आप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पाया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के करीबी समाहा,
0: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमा।
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा,
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा।
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो फला,
0: ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला।
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार।
1: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग,
0: ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग।
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार,
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवा।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी अहंग बोध त्यागत।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद।
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता।
1: ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत।
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइये।
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय दाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म।

0: अष्टपदी, कई कोट हुए पुजारी,
1: कई कोट आचार व्यवहारी,
0: कई कोट पै तीर्थवासी,
1: कई कोट बन भ्रम है उदासी,
0: कई कोट वेद के स्रोते,
1: कई कोट तपी सर होते,
0: कई कोट आत्म ध्यान तारे,
1: कई कोट कब का विचार है,
0: कई कोट नवतन नाम ते आवे,
1: नानक करते का अंत न पावे,
0: कई कोट पय अमानी,
1: कई कोट अंध अज्ञानी,
0: कई कोट कृपन कठोर,
1: कई कोट अपेग आत्म ने कोर,
0: कई कोट परदर कोहरे,
1: कई कोट पर दुख ना करा,
0: कई कोट माया शर्मा है,
1: कई कोट परदेश परमाहे,
0: जित लाओ जित लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रास भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्व पाए,
1: कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
0: कई कोट पवन पानी वै संतर,
1: कई कोट देश भू मंडल,
0: कई कोट सस्यर सूर्ण कतर,
1: कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र,
0: सगल समुगरी अपने सुतारे,
1: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
0: कई कोट राजस तामस सातक,
1: कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त,
0: कई कोट किए रतन संबंध,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट किए चजीवे,
1: कई कोट गिरि मेर स्वर्ण थीवे,
0: कई कोट जाक निरपसाच,
1: कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच,
0: सबते नेरे सबूते दूर,
1: नानक आप अलिपत रहया भरपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक सुर्ग निवासी,
0: कई कोट जन्मे जीवे मरे,
1: कई कोट बहु जोनी फिरा,
0: कई कोट बैठ सी खाए,
1: कई कोट काल है थक पाहे,
0: कई कोट किए धनवंत,
1: कई कोट माया मह चिंत,
0: जय जय पाणा तैत राखे,
1: नानक सब किश प्रभ कह हाथे,
0: कई कोट भय वैरागी,
1: राम नाम संग तिन लिव लागी,
0: कई कोट प्रभ को खोजंते,
1: आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास,
1: तिन कौ मिलो प्रभ अविनाश,
0: कई कोट मांगे सत्संग,
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
1: नानक ते जन सदा धन धन,
0: कई कोट खानी हर खंड,
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
0: कई कोट होए अवतार,
1: कई जुगत कीनो बिस्तार,
0: कई वार पसरियो पसार,
1: सदा सदा एक एक अंकार,
0: कई कोट कीने व भांत,
1: प्रभ ते होए प्रभ माहे समात,
0: अकांत न जाने कोई,
1: आपे आप नानक प्रभ सोए,
0: कई कोट पार बम के दास,
1: तिन होवत आत्म प्रगास,
0: कई कोट तत के वेते,
1: सदा निहारा एकु नेत्रे,
0: कई कोट नाम रस पी में,
1: अमर पै साध साध ही जीव,
0: कई कोट नाम गुण गावे,
1: आत्म रस सुख सहज समावे,
0: अपने जन को सा समारे,
1: नानक ओए परमेश्वर।

0: गर्भ करे अष्टपदी जिसका
1: जिसके अंतर राजमान
0: सो नरक पापी होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत बिष्टाता जंत
1: आपस को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे बहु जोन प्रमावे
1: धन भूमिका जो करे गमान
0: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी विसावे
0: नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे
1: धनवंत होए कर करवावे
0: तृण समान कश संग न जावे
1: बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस
0: फल पीतरता का होए बिना
1: आपते आप जाने बलवंत
0: किन मैं होए जाए पस महंत
1: किसे न बदे अपंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुरबर साथ जाका मिटे मान
0: सो जन नानक दर गए परवान
1: कोट कर्म करे तारे
0: श्रम पावे सगले बिरथारे
1: अंक तपस्या करे अहंकार
0: नरक सुर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आदम नहीं दरवे
0: हर दर गए कहो कैसे गावे
1: आप उसको जो भला कहावे
0: तिसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जाका मन होए
0: बहु नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझसे किछ होए
0: तब इसको सुख नाही कोए
1: जब जाने मैं किछ करता
0: तब लग गर्भ जोन मह फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लग नह चल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय दे सजा
1: कृपा दे बंधन टूटे
0: प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहस कटे लग कोट सावे
0: त्रिपत न आवे माया पाछे पावे
1: नानक भोग भी क्या क्या करे
0: नह त्रिपता वै खप खप मर
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे
1: नाम रंग सर सुख होए
0: बटभागी किसै प्रापत होए
1: वर्ण करावण आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: वर्ण करावण करने हार
0: किसके हाथ कहा बीचा
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप प्रभ सोए
1: जो कुछ गिनो सो अपने रंग
0: सब ते दूर सब हूं कै संग
1: जय देखे करे विवेक
0: आपे एक आप है अनेक
1: मरण बिनसे अब न जाए
0: नानक सद ही रहा समाए
1: आप जिसे समझे आप
0: आपे रचिया सब कै साथ
1: आप किनु अपन विस्तार
0: सब काश उसका ओ करने हार
1: उसे बिन कहो किछ होए
0: अंतन अंतर एक कै सोए
1: अपने चलत सब करने हार
0: कौतुक करे रंग अपार
1: मन में अमन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभ स्वामी
0: गुरु प्रसाद किने वख्यानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मधे किने बिरला चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
0: घट घट सुनी श्रवण बख्याणी
1: मित्र

0: अष्टपदी संत जन मिल करो विचार
1: एक सिमर नाम उधार
0: अवर उपाव सब मीत विसार
1: चरण कमल रित माय उतारो
0: करण कारण सो प्रभ समरत
1: निरकार कवो नाम और बत
0: ये तन संचो हो वो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस राखू मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाहे
0: जिस तन को चार कूट उठत हवे
1: तन हर सेवा ते पावे
0: जिस सुख को नित बाछे मीत
1: सुख साधु संग प्रीत
0: जिस शोभा को करे पली करनी
1: सा शोभा बजार की सरणी
0: मन को पावी रोग न जाए
1: रोग मिटे रोग दिलाए
0: सर्व निधान मैं हर नाम निधान
1: जप नानक दर गए परवान
0: मन प्रभु दो हर कह नाए
1: नावे टाए
0: ताको बिघन लागे कोए
1: जाके हृदय बसे हर सोए
0: कल ताती ठंडा हर नाओ
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: भव बिन सह पूरण होया
1: भगत पाए आत्म प्रगास
0: जित कर जाए बसाए अबिनासी
1: नानक काटी जमपासी
0: तत विचार कहे जन साचा
1: जन्म मरे सो काचो

0: राष्ट्रपति जाचक जन जाचे प्रवदान
1: कर कृपा देवो हर नाम
0: साजना की मांगो तूर
1: पार ब्रह्म मेरे सरदा पूर
0: सदा सदा प्रभु के गुण गावो
1: सास सास प्रभु तुम ते हवो
0: चरण कमल सो लागे प्रीत
1: भक्त करो प्रभु की नित नीत
0: एक कोट एक को आधार
1: नानक मांगे नाम प्रभु सार
0: प्रभु की दृष्ट महासुख होए
1: हर रस पावे बिरला।

0: अपने पौने लय समाए
1: तुमते फिर नहीं कुछ होए
0: अपन सूत सब जगत परोए
1: जाको प्रभु जी आप जाए
0: सच नाम सोई जन पाए
1: तो समदासी तत का वेता
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता
1: जी जंतर सब तंके हाथ
0: दीन दयाल अनाथ कुनाथ
1: राके दस कोई न मारे
0: सो मुआ जिस मनो

0: गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे
1: गावन पंडित पर रखीसर जुग जुग वेदा नाले
0: गावह मोहनिया मन मोहन सरगा मच प्याले
1: गावन रतन उपाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले
0: गावह जोत मह बलसूरा गावह खानी चारे
1: गावह खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे
0: से तुन गावह ज्योत पावन रते तेरे भक्त रसाले
1: होर केते गावन से मैं चितन आवन नानक क्या विचारे
0: सोई सोई सदा सच साहिब साचा सची नाई
1: हैपी ओसी जाए न जासी रचना रचाई
0: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन अपाई
1: कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वड़ियाई
0: जो तुस भावै सोई करसी हुकम न करना जाई
1: सो पातशाह हो सा पातशाह नानक रहण रजाई
0: मुंदा संतोख सर्प चोली ज्ञान की कह बपूत
1: किंता काल कुवारी काया जुग डंडा प्रतीत
0: आई पांती सगल जमाती मन जीता जग जीत
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश
0: भक्त ज्ञान दया पंडान कट कट वाजे नाद
1: आप नाद नाथी सब जाकी।

0: अनाथ जुग जुग एक वेस
1: आसन लोए लोए भंडार जो किच पाया सो एक आवार
0: कर वेख सृजनहार नानक सच्चे की साची कार
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एक वेस
0: एक दूजी बहुत लख हो है लख हो है लख बीस
1: लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश
0: एक राय पत पवड़िया चढ़िया हुए अकीस
1: सुनगल्ला आकाश की गीता आई
0: नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा।

और सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपै छंत प्रसाद चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेह अचल मूरतन भव प्रकाश मितो।

0: नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं
1: नमो सर्व रंगे तर्पणी
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी।

0: सर्व नायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार
1: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक
0: सर्व शास्त्र न जाने ये रूप रंग रेख
1: परम वेद पुराण जा कह नेत भगत नित
0: सिमरत प्राण शास्त्र न आवे बहुचित
1: मद पार छंत्व प्रसाद गुनगन उदार महिमा अपार
0: आसन अपंग उपमा अनंग

भुजंग प्रयाचन चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र जाने।

0: भगवती चंत्व प्रसाद कथते के आ चिज देस है के आ भिज पेस है के आ भिज लोक है के आदित्य सुख है के राजन प्रभा है के धर्मं तुजा है
1: सुख भरने के सर्वा अभरने
0: के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है।

0: करीम है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दान्य है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, के सर्वत्र पान्य है, के सर्वत्र मान्य है,
1: के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र।

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है।

0: जगत अनुप है।
1: निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है।
0: अनुक्त स्वरूप है पर जगत अनुप है।
1: चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है।
0: कर्म है अनाद है जगाद है।
1: अजय है अभय है अभूत है अतूत।

0: धरणी त्रितं
1: अमितेश्वर है परमेश्वर है
0: अकृता कृत है अमृता मृत है
1: अजबा कृत है मृता मृत है
0: नायक है कल कायक है
1: विश्वंपर है कुरनाल्य है
0: रिप नायक है सर्पायक है
1: भव पंजन है अरगंजन है
0: रिप तापन है जप जापन है
1: अकलंकृत

0: भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे।
1: सरिपल सरी भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सुधारे।
0: तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख।

0: तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे
1: जवन पग परे तिहारे
0: तिनके तुम संकट सब टारे
1: जो कल को एक बार त्याए है
0: ताके काल निपट नह है
1: रक्षा होए ताई सब काला
0: दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला
1: कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो
0: ताके ताप तनक मह हरे हो।

पंजवा संता के कार्ज आप खलोया हर कम करावन आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो गुरु रूप सा संग जी वडभागी हो जो अमृत वेले गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के सतगुरु जी दे दर कर दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। गुरुदेव जी ने अपार कृपा रहमत कीती है पावन दीवाना दी संपूर्णता ते अज दे इलाही दरगाही श्री मुखवाक बख्शिश कीते हन जो सूही राग अंदर पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव दातार जी की अमृत रसना तो उचारण किए हुए सतगुरां दे पावन अंग 783 अते 84 उपर सवायमान हन। ये पावन शब्द इतिहासिक शब्द है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दातार पिता महाराज जी ने जो अमृत सरोवर की खुदाई की ताल बनवाया संगतां बड़े चा प्यार उत्साह दे नाल प्रभु दे रंग विच हरी दे रंग विच रंगियां वाहिगुरु दे रंग विच रंगियां सेवावां कर रही सन। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह आप विच वरत के सारियां सेवावां करवा रहे सन। तां जदों भी कोई संगत आ करके सतगुरु दतार पिता महाराज जी नूं इह आखदी सी कि आप जी ने बड़ी कृपा कीती है दुखियां लई रोगियां लई अभिलाखियां लई इक ताल आप जी ने बनवाया है बनवा रहे हो तां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ये सारे महान कार्ज परमात्मा ते निर्भर करते हैं कि वह परमात्मा आप ही अपने भगतों की लाज रखता है अपने भगतों के संतों के कार्जा में आके खलोंदा है। वह हरि आप ही सारे काम करवा रहा है। ये अमृतसर साहब की धरती सुहावी है ये अमृत सरोवर ताल सुहावा है जिदे विच अमृत जल भरिया होया है। जो भी रब के प्यारे भगत जन वाहिगुरु परमेश्वर के नाम विच रंग के अमृत जल विच डुब्बी मारते हैं अपने अंतःकरण नूं शुद्ध करते हैं उन्हों नौ निधियां 18 सिद्धियां सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। परमात्मा कोई तोट नहीं आउण दिंदा। जो वाहिगुरु परमात्मा के भगत हो निबड़दे ने वाहिगुरु उन्हां नूं तन दा मन दा इशनान बख्शदा है ते अपने चरणां दी प्रीत बख्शदा है। ये धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा बख्शिश कीती है। सतगुरु कृपा करन दतार पिता महाराज जी सभना नूं नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके निवाजन जी। आओ प्यार सहित हुण आसा की वार दे कीर्तन होणगे। सत्कारयोग भाई साहब भाई प्रतपाल सिंह जी रसीला तिन्हां दा जत्था आप जी नूं अमृत बाणी दे कीर्तन नाल जोड़ेगा। अज ऐतवार दा दिहाड़ा है सारा दिन गुरु दरबार विच कीर्तन दरबार होने हन दीवान सजने हन आप जी आने वध चढ़ के हाजरियां भर के सतगुरु जी दे पावन पवित्र दर घर दियां खुशियां प्राप्त करनियां हन जी। भुला चुका दी खिमा समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

तुम ऊंचे दे ऊंचा सगल समगिरी तुमरा सूतर तारी तुम ते हो ऐसो आगे का

आप खलोया हर कम करावण आया राम। मेरे गरीब निवास सचे पातशाह जी कृपा करते ने जिस वेले संत लफ्ज आउंदा है, संत लफ्ज अखर जेड़ा किसी लवास का नाम नहीं है। मैं आप जी नाल बहुत वार इहदी विचार कीती है, ससे तो भाव जिहदे कोल सिमरन भी है, टिप्पी तो नन्ने दी आवाज है, जिहदे कोल निम्रता भी है, तत्ते तो भाव जिहदे कोल त्याग भी है। ये तिन्ने चीजा जिहदे कोल ने किसे लवास विच है, और रब दी प्यार वाली बख्शी वो ही रूह है। उहदे वास्ते बोल ने भिन्नी रैनड यार चमकण तारे जागे संत जना मेरे राम। प्यारे राम प्यारे सदा जग है नाम सिमरै अण दिनो चरण कमल ध्यान हिरदै बिसर नाही। एक खिणो जिन्हां नूं नाम नहीं विसरदा उह रब दीआं प्यार वालीआं बख्शीआं होईआं रूहां हुंदीआं ने। संत मंडल मैं हर मन वसै, संत मंडल मैं दुरत सब नसै, संत मंडल मैं संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। जिथे केवल मेरे वाहिगुरु निरंकार जी दीआं बातां पाईआं जाण, जिन्ने प्यार वालीआं बख्शीआं होईआं रूहां ने उहनां दे कारजां दे विच मेरा गुरु आप खलोंदा है। कदों खलोवेगा? जदों कारज की आरंभता तो पहला मेरे गुरु की टेक लै लवेगा। गुरु अगे अरदास करेगा, महाराज तुसा ने कई बार देखिया होगा, कई बार कारज वेखण नूं बड़ा सौखा जिहा लगता है, कहिंदे जी इहदे एवें ही हो जाणा है, पर वह कारज इन्ना औखा हो जाता है हुंदा ही नहीं है। कई बार यह हुंदा है कारज बड़ा औखा हुंदा है, कहिंदे लो जी गए ते आगे कारज हो गया, गुरु विच वरत गया, गुरु अगे कीती अरदास वरतदी है, कीता लोड़ीऐ कम सुहर पै गुरु कोल बेनती करिए गरीब निवाज कारज मेरा नहीं है। इसे शब्द विच बोल आ जाने ने फिर जिसका कारज ते नहीं किया, संतां के कारज आप खलोया, कीता लोड़ीऐ कम सुहर पै आखिए की कहिए कारज दे सवार सतगुर सच साखिए, संता संग निधान अमृत चाखिए, पै भंजन मेहरवान दास की राखी है, नानक हर गुण गाय अलख प्रभ लाखी है। अचिंत काम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा थिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे। नेकां ही प्रमाण ने बाणी किते समाप्त हुंदी है, धरन सुवन्नी खड रतन जड़ावी हर प्रेम पुरख मन उठा सबे काज सुहेलड़े थीए गुर नानक सतगुर तुठा। गुर पूरा जिन सिमरिया सही भए निहाल नानक नाम आराधना कारज आवै। तरजी अरे एक टेक तू लाहे बेडानी आस नानक नाम त्याई है कारज आवै। रास ये किस वेले हुक्मनामा आया तुहानू पता है, याद है जिस वेले आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश सचखंड श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब विखे बाबा बुढ़ा साहिब जी जिस वेले रामसर साहिब जी दे पावन धरती तो स्वरूप सीस ते लिया है, धन गुरु अर्जन देव महाराज गरीब रिवाज आप चौर करते हुए सचखंड हरिमंदर साहिब पहुंचे सन, तो महाराज ने कहा बुढ़ा साहिब गुल खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ, अदब संग ग्रंथ को खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। ते जिस वेले आवाज आई ता की आवाज आई।

सारी संगत जिन्हें प्यारे गुरसिख जुड़ बैठे हो भाई रसना द्वारे प्यार सहित आखो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। भाई बोलो रसना नु खेचल दियो मुख द्वारे आखो भैनों गज के आखो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सतनाम सिंह जी ने ते सारा ही जोर ला दिता वाहिगुरु शब्द जपाउण लग्या कुछ रूहां चला गईयां ने कुछ बैठिया ने बहुत ही प्यार विच सतगुरु जी दे गुरमंत्र दा जाप करवाया है। वड्डियां भागां वालियो मैं प्रकरण बंधन तो बिना ही आप जी दे सन्मुख अर्ज आरंभ कर दिती है। जिस वेले सत्कार योग रागी सिंह जी आप जीयां नूं वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करवा के गए ने तां सत्कारयोग साडे सैकटरी साहब जी ने नाम की महिमा वड्याई होर कर दिती वड्याई नाम की होर कीती है। नाम दियां वड्याईयां ने जिन्हां दे मुख विच्चों एक वार भी वाहिगुरु शब्द निकल गया एक वार तां श्री माण भाई गुरदास साहब जी कहिंदे सब फल उन्हां नूं प्राप्त हो जांदे ने। श्री मान भाई गुरदास साहब जी ने एक कवित बड़ा प्यारा कलम बंद किया है। भाई साहब जी कहिंदे जैसे अठ सठ तीरथ परस कियो जुग चार रहो कैलाश रहो क्योंकि वाहिगुरु मंत्र तुहानू सरवण करवा के गए ने। कोई अठाठ तीर्थां ते इनान करन दा जतन करे तो बड़ा औखा है। किधरे दरबार साहब जाइए तो कई बार अमृतसर गए होइए दरबार साहब जाण दा टाइम नहीं मिलता पर महाराज कहिंदे ने वो जिहड़े तीर्थ ने वो नाम करके प्रगट हो जांदे ने तीर्थ नावण जाओ। हाँ जी तीर्थ नाम है। जैसे अठ सठ तीर्थ परस कियो जोग चार रहो कैलाश रहो। मेरी उम्र होनी चंगी है बंदा कर लवे जतन करे अपने स्वासा नु हिसाब नाल गिनती नाल वरते बहुत संजम नाल चले पर महाराज कहिंदे तो दुगने भी हो जावे पर जे मेरे वाहिगुरु जी दी नजर हेठा नहीं आया ते तुहानू बोल याद है जे जोग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चला सब कोए चंगा नाव रखाए कह जस कीरत जगले जे तिस हां जी नदर ना आवई तां तां शब्द है तां जे मेरे वाहिगुरु जी दी नदर हेठा नहीं आया तां वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धारे कैलाश नामे पहाड़ा ते जाके रहंदा जतन करे। महाराज कहिंदे कोई लाभ नहीं मिलना अठाठ तीर्था ते लाभ नहीं मिलना लमेरी उम्र दा लाभ नहीं मिलना पहाड़ा ते जाके लाभ नहीं मिलना। दूजा बोल कहिंदे ने जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में असमेध जाग भंग ठइयो एक बार लंगर कीता बंदा कहिंदा जी मैं इना लंगर कर लिया कहिंदे असमेध जाग करे जो पांडवा ने कीता सी कड़ियाल खड़कदे ने कहिंदे लखां ही वार कर लवे लखां ही वार कर लवे एक वार नहीं। जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में असमेध जाग भंग ठइयो। तीजा बोल जैसे कोट बरस करोड़ा साल बड़ा औखा इन उम्र ते हुंदे ही नहीं है सानू सोझी देण दी बात है कहिंदे पुट्ठा लड़कदा रवे जल धारे करदा रवे। जैसे कोट बरस तप उर्द मुखी बैसंतर मैं तन दाहे दइयो। हुण चौथा बोल सुनो फुन अमृत नाम वाहिगुरु जी फुन अमृत नाम विशेष इति

रोज ही महाराज साडी चोलियां खुशियां नाल भर के भेजते हैं, गड्डी वाले नूं गड्डी, घर वाले नूं घर, कारोबार वाले नूं कारोबार, केड़ी केड़ी गल दा शुकराना करिए। पर तुहाडे चरणां च बेनती है, जे भाई तारू सिंह जी नूं प्यार करदे हो दिलों, अज दे कीर्तन विचों फिर यह मंग मंगियो, सतगुरु मेरे घर विच सोहनी दस्तार केस तेरा तेरा बाणा ते बाणी मेरे घर विच वसदी रहे। जिस घर विच बाणी दा पहरा 24 घंटे, खाण पीण तो पहला मालक दा नाम लिया जांदा है, नितनेम कीता जांदा है, वो घर बाबे नानक दा घर बन जांदा है। चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। भाई तारू सिंह जी दी असीस सिखी सिदक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल प्यार, एक बारी सारे गाओ, फिर समा समाप्ति है।

0: सुनहार सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो कर।

दाते। इतनी सेवा प्रदान करनी, ये बोलना चुकाने की मांग आहोस्त कार्य भाई साहब पैस्तनाम सिंह जी गुरदासपुरी इतना देर आगे जिते पासों पावन पवित्र कीर्तन शरण करी जी बलाओ फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।